0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलने लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जदों किसी दी नजर धुंधली होनी शुरू हो जावे, जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जांदे ने। गड्डी चलाउणी मुश्किल, टीवी देखना औखा ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे। इस लई बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। एह प्रीमियम कैटरैक सर्जरी माड़ी नजर नूं भी कस्टमाइज कर दिंदी है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जाती है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोलदे ने। होर जानकारी लई ईमेल करो punjabi@lumia.io, punjabi@lumia.io।
2: 289-992-9500।
1: अपनी बिजनेस दी एडवरटाइजमेंट दे लई या होर कोई भी जानकारी लैण दे लई कॉल करो 6475041557, 6475041557। पंजाबी लहरा या चलो AM 530 नू 24 घंटे 7 दिन अपने फोन ते डायल करके सुनन दे लई डायल करो 416-477-2040, 416-477-2040।
3: ओ बल्ले बल्ले लैंबड़ा, बड़ा टॉर कढ़िया अज, किथे नू चलना?
4: हां कहंदे खाड़ा लगना लितरा पिंड च, चल देखणी आने आ।
3: ओ अच्छा भाई, चल देखदे आ फिर। ओ करतारा जांदा साइकिल ते,
4: खड़ा कर ओनू।
3: ओ करतारे आ जा,
4: ओ रोक ना, खड़ जा।
5: आ किदा भाई, ओ हां हां रुक जा ना, बड़ा रौला पाया। की गल,
4: रौला कादा? खाड़ा लगा लितरा पिंड च, कहंदे मक्खन आया।
5: मक्खन?
3: ओ तू मक्खन नू नहीं जानदा?
4: केड़ा मक्खन?
3: ओ मक्खन मित्रा दी मोटर वाला।
5: मित्रा दी मोटर वाला?
3: बोतल बातल फड़ो तो चलो साइकिल चढ़ जा।

0: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नो।
1: मैं के अचन जी सलाम कहने
0: दिलानु टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तराने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गुंजनगे 24 जुलाई नो। इवेंट्स दिनाल ता फिर देर किस गल्दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा आज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा नु कॉल कर सकदे हो 6477839873। बस रेडी हो जाओ नचण गाउण ते चूमण दे लई सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

कलर टीवी अवेलेबल फैशन आईक्यू फैशन आईक्यू हुने कॉल करो 9054533225 या गूगल से सर्च करो फैशन आईक्यू स्पेशल गिफ्ट ले रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देना ना भूलियो।

अच्छा देखो यार क्या माहौल हुंदा जदों तुसीं व्याह वाले दिन सेरे बन्ने हुंदे आ ते सवेरे सवेरे गुरु घरे मत्था टेक के आउणा ते यार ओह दिन तां बहुत खूबसूरत हुंदा हर बंदे नूं इंतजार हुंदा उस दिन दा ते चाह भी बहुत हुंदा उस दिन तां महाराजे वाली फीलिंग हुंदी आ है ना सो 905-673-3337 ते जिन्हां जिन्हां दे व्याह ते रंगले सरदारां ने गाता यार ओह तां व्याह बस यादगार ही हो गया और गरनाम भुल्लर दे व्याह ते जदों इन्हां नूं सानूं सुणन दा मौका मिलिया ते यकीन करियो यार भी सब कुछ ही भुल गए सीगे सारा मेल सब दी अटेंशन सिर्फ गरनाम भुल्लर नूं भी लोग वेखण हट गए ते इन्हां वल सी सारी अटेंशन ਬੜੇ ਸਾਧ ਮਰਾਦੇ ਅਤੇ ਰੰਗਲੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
2: S&S Lawyers को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000
3: Get ready! GTA

0: The Logistic Inc. 14 Stainway Boulevard, Unit 4, Etobicoke.
1: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच।
2: मैं के अचन जी सलाम कहने आ।
1: सिर्फ से सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल। ता फिर देर किस गल दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा आज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसे भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधु नु कॉल कर सकदे हो 6477839873 या 4378700001 ते।

0: bring Wheel Alignment.
1: Team 4 Entertainment पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026
2: ओए सावन चढ़िया
1: टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो
2: दुनिया मेले जानती
1: इन थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो मनमोहन वारिस कमल हीर अते संगतार Tickets are available at ticketmaster.ca. For details, contact Team 4 Entertainment 647-400-6862 416-303-4444. Ee tusi is show no miss karna chahoge?

0: duper-sat, jump, a-sat, du-a-sat, hebby-sat, nadit, hosi-bi-sat, bole, sonihal, sasiyakal.
1: मम्मी पापा दे वीजे लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगा माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत सवेर चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके। मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधु तो मेरे नाल पंजाब की धरती तो रमेश हुशियारपुर जी जुड़नगे। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 7:03 हो चुके हैं, थोड़ा साढ़ा साथ हूँ तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

0: याद है मैनू जो तो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, कितनी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने चंजर। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दिती, ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

मैगलियन दा रोड़ा कुड़ा मेरे साहब दी वड़ियां तणके जिन्नी कदर ना मेरी मैंने तख्त बिठाया साइया जे वेखां मैं अमलां वल ते कुछ नहीं मेरे पले जे वेखां तेरी रहमत वल तां बल्ले बल्ले बल्ले तां बल्ले बल्ले बल्ले उस दे रहमतां बख्शे सत्कार एक बार फिर तो ब्रूहां ते दस्तक दे रहे अमनदीप सिंह पैनीपाल वालों आप सबनों शुभ सवेर गुड मॉर्निंग सत श्री

खास खूबसूरत सुविधा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्कन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक जिथे सानू सुन रहे हो उत्थे तुसी सानू सुन रहे हो इस समय इंटरनेट की मदद के नाल दुनिया के किसी भी कोने च किसी भी मुल्क च सुन रहे होवोगे www.am530.ca या तुसी सानू radiovastoronto.com दे उत्ते लिसन लाइव ते क्लिक करके सुन सकते हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं, चलते हैं एक सफर दे वाल जो बहुत खूबसूरत पर तुहाडे साथ दे नाल। इस साथ दौरान 905-673-3337 जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो ले ली तुहाडी टिकट टू कॉल स्टूडियो ते तुहाडी आवाज साडे शो का हिस्सा बनेगी। अज असीं स्पैशल चार फैमिली जिहड़े हैगे कूपनस कढ़न जा रहे हैं, सुनते रहो। पंज फैमिली कूपनस ने जिहदे विच तीन जाने तक तुसी जो अपने लंच और डिनर करोगे अज के शो जो लोग हो गए जो नाम लिखाएंगे तो वह अटेंड करेंगे उन्होंने बारे भी असं गल करा तुम सुनते रहो। इस समय मेरा फ्रैश ग्रॉसरी डिपो तो विजी ने जिथे डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया हो रही कोई गल्ला मार रही है आम लोग महंगाई का हिस्सा बन चुके हैं तो दे आर सरवाइविंग सरवाइव कर रहे हैं तो सरवाइवल की होंगे कि जो

0: insurance specialist from TalkTrace Insurance Agency.
1: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704.
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers.
3: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
4: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घर आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
5: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
7: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਫੋਨਸ ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ ਮੋਰ ਚੋਇਸ
8: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
9: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
10: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
9: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
10: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नूं या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नूं क्लिक करो, उत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7। सानूं माण है कनेडियन होण दा, ते कनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जिहड़े के इक्को ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने, कनेडियन मेड। अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लैके जाओ ते हंड सा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटां वाला 5 सीटां वाला तुहाडी अपनी मर्जी आ। 11x11 10x10 ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ 24 ਰੀਗਨ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 905-792-8053, 905-792-8053। ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ ਔਰ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ।
4: ਚਲੋ AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
3: ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-500-6444।
5: 905-564-6444 इनकम किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे, अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नू जिना तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो।

0: या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
0: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dining and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday manpasand kulcha plate. Tuesday chana bhatura. Wednesday lajawab veg thali. Thursday yummy haka thali. Friday maza lavo saag makki di roti da. Hey yummy deals is Simply Indian this sariya hi locations te. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab

0: ஆசியா செகண்ட் மோர்கேஜ் ரீஃபைனான்ஸ் கிரிமினல் ஜோனியோ தத்து சிவி அப்படிங்கட்டி மூடம் 1200 டெரி ரோட் ஈஸ்ட் யூனிட் 22 மிசிசாகா 416-804-2015
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
4: येलो टायर सेंटर ते तुहानू ट्रकां और ट्रेलां दे हर तरह दे यूज ते ब्रांड न्यू टायर मिलणगे ते व्हील अलाइनमेंट बैलेंस न्यू टेक मशीनां नाल कीता जांदा है।

साइबर प्रोफेशनल सर्विस है, फुली इंश्योर्ड कंपनी है, नंबर है 4373180400। बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री एस्टिमेट ले लो, 437-318-0400 ते कॉल सी करो। ते जी टी ए क्रेडिट दे रेखा ते नदीम जी पिछले 18-20 नहीं 25 सालों तो कर्जा माफ करवा रहे हैं, सिर कर्जा चढ़ गया ज्यादा। तुसी याद रखो एको एक टीम जी टी ए क्रेडिट, कोई क्रेडिट कार्ड दे बिल ने, कोई थोड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट साध ने, नंबर है 416-650-1100, 416-650-1100, 416-650-1100 ते कॉल कर लो जी टी ए क्रेडिट दी टीम नो। चलो फिर मान साहब चक दे कम नो।